संसार ते आके प्यार ही वंडिया है, पर संसार ने सदा ही रब दे प्यारियां नू दुख ही वंडिया है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हंकारी पंडिया ने जदों देश परदेशा विच जाके हुक्मनामे भेज दिते भाई बड़ा यज्ञ कर रहा है कबीर, ता अकाल पुरख वाहिगुरु आप आके फिर सारिया नू भोजन छकाया, अपने भगत की रख्या की, अज भी रख्या कर रहे। कबीर जी कहंदे ने जदों सानू जंजीरां विच जकड़ के गंगा दी लहर विच दबो दिता गया, फिर सानू डर नहीं लग्या, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु अंग संग है। फिर डर कादा भाई, ना ओए मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, जिन्हां दे हिरदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम है, वो डरदे नहीं भाई, अंग संग हन। निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल, निर्भो दाता अकाल पुरख जिन्हां दे हिरदे विच वस गया, उन्हां नूं भाई किस दा डर है। जिवें कबीर जी कहंदे हन, मन ना डिगे तन काहे को डराए।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल कर। सेवा तो बिना तेरा शरीर निष्फल है, सिमरन तो बिना तेरा मनुच्छा जन्म सफल नहीं हो सकता। होर जितनिया भी तेरिया करनिया हन ओ किसे कम नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह एक बड़ी सुंदर रमणीक थां ते समुंदर दे किनारे आप जुड़े बैठे हन। कीर्तन हो रहा है, मर्दाने ने नेत्र खोले, सामने की तकिया एक मृतक शरीर पिया है।

सुख प्रजा दी सेवा करके भुखे नूं भोजन देना, लोड़ अनुसार कपड़ा लीड़ा गरीबां नूं देना, उन्हां दीआं लोड़ां पूरियां करनियां। जे ए सारा धन तू नाल ले जाना चाहुंदा है ना, तां संसार विच जितने भी गरीब गुरबा है सब नूं वंड दे, ए फिर तेरे नाल।

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन नु कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। धन गुरु नानक पातशाह जी नु आके कहन लगा, महाराज हुन कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सचे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमान।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

0: गला खुद कटाने को बस आप ही है।
1: दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गे ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू में साका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।

तोर मस्तक हर प्रभु लिखिया गुरु नानक मिलिया। भई गुरु सिखां दे चरणां दी जपन वालियां दे चरणां दी तूड़ी, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करें उद्दम तूर साधु की थां। किल विख मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूड़ गवाई। महापुरख जपन वाले जदों तीर्थां ते चले जान तां तीर्थां दा भी उधार कर जांदे, क्योंकि तीर्थ भी पुकार करदे हन हे वाहिगुरु, संसार दे जीव साडे विच इशनान करके पापां दी मैल सुट जांदे हन। कोई आप दा प्यारा भेज जिदे चरण पैंदिआं असीं फिर पवित्र हो जाइए, उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई भगत नामदेव जी कहंदे हन कि इह सुभाग मैनूं ही प्राप्त होया, मैनूं

बौद्ध सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडण तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान तर जल्दी सत पृथ्वी दिस आई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई कर दे, जगत जलंधा रख ले अपनी कृपा दा, जित द्वार है उपरे तित है लेओ बार, जिवें बचदा ही बचा। इन्हां तपदियां सर्दियां नूं जिवें शांति दे सकना मेरे साहिब उवें ही दे। जिस राह तों जिस दर तों कोई तेरे नाल जुड़दा है जोड़ लै। साहिब टुटे होए मनुख नूं, बिखरे होए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इन्ना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप ही सुखी होवे ते आले दुआले नूं सुख बने। इत्थे भी कहिंदे ने ना, आप ही सुख पा, होरना नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख निद नाम, नाम वो खजाना जिस सारे सुख ने, ते जिन्होंने इस सुख नूं प्राप्त करने का यतन किया है उन्होंने जे कितने किनका मात्र भी इसका सच्ची मुची प्राप्त हो गया है, थोड़ा जिहा भी उन्होंने रस आ गया है। साहब कहते ने मैं उसकी वड्याई नहीं दस सकता, संकल्प भी बख्शिया है, आपा संकल्प करिया करिए, मन में एक इच्छा करिया करिए, आशा करिया करिए। सिमरों सिमर सिमर सुख पावो, जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, कल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन विच शरीर विच वरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे। सिमरों जात विसुंभर एक है, वो जिहड़ा विश्व दा मालिक वाहिगुरु अकाल पुरख है, उस नूं याद करा, उस नूं चेते करा, उस नूं जपा, जिस नूं अगे भी बड़े याद करदे। नाम जपत अगणत अनेक है, वेद कुरान सिमरत ये सारे जिसकी सिफत करदे ने।

जिथे सूरजा का चान बेकार है उथे नाम का चान आधार है। जहां पंथ तेरा को ना सिंहाणू अपने भरा मित्र पुत्र जिस राह ते तेरे वाकफ नहीं बनेंगे हर का नाम तहनाल पछाणू उथे तेरा साझीदार होके निभेगा साथी होके निभेगा। जय महा भयान तप्त बहु काम जिथे अग वर्दी जापदी कीते हुए कर्मां दे फल वजों माड़े कर्मां दे फल वजों जिथे तपशां व्यापदियां ने उथे जे नाम जपिया होवे ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम ठंडका देवेगा तेनू उन्हां तपशां तो बचावेगा। उहदे बारे साहिब कहिंदे ने सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभाए खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे जे तू एक उस दा आसरा रख के चले नानक बौर ना आवे जाहे तेनू मुड़ के आना जाना नहीं पए जिंदगी दा मनोरथ पूरा हो जाएगा। वो मनोरथ जिंदगी दा की है।

आख्या फरमांदे आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है। ए आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस दे जाने ही सो है खालस दी।

कोई रचना बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस मौज का कोई इशारा होवे, कोई मिसाल होवे दुनिया ते, तां उदी मिसाल दे के समझाया जा सकदा। कबीर जी नूं पुछया सी भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दिते, नरक भी निंद दिते, ते चरना दी मौज नूं तुसी बड़ा बयान करदे हो, ओ मौज है कैसी भला दसो तां सही। कबीर जी कहन लगे कोई इस धरती ते मिसाल नहीं है जिदी मिसाल दे के मैं तुहानू समझा सकां भई चरना दी मौज कैसी है। चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरणा दी मौज नूं बयान कर भी देवां, ओ सुभाए मान नहीं होवेगा, क्योंकि चरणा दी मौज नूं कौन दसेगा। कह कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, गुंगे नूं मिठाई खवा दिओ तां ओ की दसेगा, कच्छा ही मारेगा, नचेगा, पर मुंह बयान नहीं कर सकेगा। जेड़े गुरु के लाल अमृत वेले जाग के इशनान करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के आनंद माणदे हन, गुरु के शब्द रूपी चरणा नूं हिरदे विच वसाउंदे हन, ए मौज उन्हां नूं पता है भाई। जे तू भी उस मौज नूं मानना चाहुंदा है, उसका आनंद वेखना चाहुंदा है, तां फिर मेहनत करनी पवेगी भाई, जुड़ना पवेगा गुरु दे चरणा विच। कहबे को शोभा ने, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हां तां ओ गल सुभायमान ही नहीं होंदी। आ प्यार वालियां नूं जिन्हां नूं चरणा दी मौज चंगी लग गई, ओ कहंदे ने इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरणा दी मंगा महाराज दी। जे तुठा है तां तेरे चरणा दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जावे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले, दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़िया होईयां सन, ते महापुरख कहण लगे गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुन दान करदे कादे लई, कि मैनू चरणा दी प्रीति बख्शिश होवे, चरणा दा प्यार मेरे। ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी कहण लगे जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए तां फिर की मंगोगे। ते सारी संगत हैरान हो गई भई चरणा दी प्राप्ति हो गई, फिर हुण मंगण दी की लोड़ है, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला है। पर बाबा जी दे सामने किसे दी जुरत नहीं सी होंदी कोई बोल जावे, क्योंकि महापुरख दी उडारी ते साडे कलयुगी जीवां दी उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों दी गल उन्हां करनी है असी सोच नहीं सकदे, असी किसे अखरां दा अर्थ तां कर लवांगे, पर उस दा भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा हुंदा है ओ किसे होर दा नहीं होंदा। कहन लगे चरणा दी प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, तां फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, तां चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लैण, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान, ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, तां फिर ओ रस ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाई। ते महापुरख कहन लगे चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लिओ। इसलिए जिन्हां नूं स्वाद आ गया है
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ।